0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री M.S.N. मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jarajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke parivesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jarajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री NCH कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री M.S.N. मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री M.S.N. मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री M.S.N. मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M. हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री M.S.N. मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगैन अर्ली। हिज मदर श्रीमती M. जलजाक्षी इज अ वेटरन वोकलिस्ट। रेकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री M.S.N. मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ संगीत साहित्य कलानिधि श्री NCH कृष्णमाचार्युलु। ही सर्व्ड आकाशवाणी विशाखापट्टनम एज अ स्टाफ आर्टिस्ट फॉर टू डेकेड्स। A versatile musician, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M.S.N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: विद्वान श्री M.S.N. मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अठाना राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री M.S.N. मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाना रागम खंड चापू तालम।

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है खर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.